फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज्यादा सख्त, और पत्थर तो बाजे ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं और बाजे ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है, और बाजे ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
6: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
8: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की ताबून।
4: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेट।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
2: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: कोशिशूं ऐं इंतिहाई ख़लूस सां गॾु जारी रखंदो। उमीद आहे तमामु जल्द असां ईंदड़ दौर जे मुज़ाकरात जी सरबराही कंदासीं। व्हाइट हाउस ॿारां फायरिंग वारो जवाबदार हिकु वाटर सिक्योरिटी फोर्स जवाबी कार्रवाई में मारिजी विया। व्हाइट हाउस ॿारां चेक पोस्ट ते फायरिंग कंदा जवाबदार सुञाणप मेरीलैंड वासी 21 साला नाइसर बेस तौर कई वई। जवाबदार जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक न हो। पहिरियां बि सेक्रेटरियट सर्विस लॻायल लॉकडाउन गुज़िरियल राति हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सेज चेक पोस्ट ते हमिलो करे 30 खां वधीक गोलियूं फायर कयूं। गोलियुनि जे ठिकाणे सबब सहाफ़ियुनि ऐं अमले में भाॼ पइजी वई। खौफ़ हिरास पकड़िजी वियो। वाक़िए बाद सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूदु कंहिं महफ़ूज़ हंधि मुंतक़िल कयो वियो।
1: राति बसि इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओता खपे। हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदारी कंदो अथसि। वॾेरो हुते वेठो टे लॻे ताईं हिते रस्ते में साह ॾिनो। वॾेरा माण्हू पासा आहिनि पर ख़ैर थी विया।
0: थुलभर सां वॾेरे जे पुट तां क़तल थियल पोलियत जो खून रोड़ण जूं कोशिशूं। पुलिस पोलियत अजमल मेमुर ते गोलियूं हलाईंदड़ वॾेरे जे पुट बिलाल सरकी खे गिरफ़्तार न कयो। पुलिस वाक़े जी अणधुरी जांच करण बदिरां वॾेरे बिलाल सरकी जी विंगार वहण लॻी। पुलिस चौकीदार अजमल जे क़तल खे इतफ़ाक़ी करार ॾेई केस बि दाख़िल करे छॾियो। मक़तूल जे वारसनि चयो आहे त वॾेरो बादशाह माण्हू आहे, बस गोली हली वियसि। नौजवान खे टे गोलियूं लॻियूं आहिनि, बस इतफ़ाक़ थी वियो।

0: This time check is
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना मुसलसल अस्करी बैंक
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: वापस कया वेंदा अमरीका जो नजरस्थानी मसूदे ते जवाब अचण जो अज जो इम्कान आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ईरान जो इंतहाई मुख़्तसर पर नतीजा ॾींदड़ साबित थियो। ईरान अमरीका विच में हतमी मुआहिदे में हकारी अगभराई। ISPR मूजिब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान जो इंतहाई अहम दौरो मुकमल कयो। फील्ड मार्शल सालसिया जी कोशिशन तौरु ईरानी क़यादत सां मुलाकातूं कयूं। मुलाकातुनि दौरान खिते में छिकताण घटाइण ऐं तामीरी राब्तनि खे हथी ॾियण ते ख़्यालनि जी डेवट थी। ईरानी क़यादत इलाकाई मसलनि जे पुरमन हल लाइ पाकिस्तान तामीर किरदार खे साराहियो। फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सफारती कोशिशुनि जो हिसो हो। मुलाकातुनि में ईरान अमरीका हतमी मुआहिदे ॾांहुं हकारी अगभराई थी आहे। अमरीकी सदर ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी वली अहद तुर्किया जे सदर कतर जे अमीर सां टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर ट्रंप जवाइज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे। ईरान सां मामला तकरीबन तय थी विया आहिनि। मुआहिदे बाबति आबना हुरमस खोले छॾींदासीं। उमीद आहे त मुआहिदो ईरान खे एटमी हथियार हासिल करण खां रोकींदो। मुआहिदे खां अॻु नुक़्ता मीडिया खे न ॿुधाईंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो ट्रंप गैर मामूली कोशिशन ऐं सऊदी अरब कतर तुर्किया मिस्र गडियल अरब इमारात उर्दन ऐं बहरीन कुवैत सां हिकु नती होने हिकु ॻाल्हि ॿोल ते मुबारकबाद पेश करे थो। वज़ीर आज़म पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त ईरान अमरीकिस्तान जी नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई। उन अमल में अणथक कोशिशन खे साराहियूं था। फील्ड मार्शल मौजूदा इलाइक़े जी सूरतहाल ऐं अमन कोशिशन खे अॻिते वधाइण लाइ ख़्यालनि जी ॾेवट मोकियो। फराते में चटादार अमन क़ाइम करे सघे। पाकिस्तान पंहिंजे अमन जी कोशिशूं इंतिहाई ख़लूस सां गॾु जारी रखंदो ऐं उमीद आहे त तमामु जल्द असां ईंदड़ दौर जे मुज़ाकरात जी सरबराही कंदासीं।
5: For the two sides to remain far apart.

व्हाइट हाउस पारां फायरिंग महिल जवाबदार एक वाटड़ो सिक्योरिटी फोर्सिस जवाबी कार्रवाई में मारजी विया। व्हाइट हाउस ते फायरिंग कंदड़ जवाबदार सुञाणप मेरीलैंड वासी 21 साल नाइसर बेस तौर कई वई। जवाबदार सर्विस जे अधिकारियुनि सां विढ़ी चुको हो। वाके बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन खत्म गुज़िरियल रात हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्स चेक पोस्ट ते हमलो करे 30 खां वधीक गोलियूं फायर कयूं। गोलियुनि जे थकाउन सबब साहिबनि ऐं अमले में भाज पइजी वई ऐं खोफ़ हिराज पकड़िजी वियो हो। वाके बाद सदर ट्रम्प व्हाइट हाउस में मौजूद हो। खेसि महफ़ूज़ हंधि मुंतकिल कयो वियो।

0: हैदराबाद में अणगतल औरत ए मर्द जा लाश हथ होसरी वाले इलाके में औरत ए मर्द जा लाश मिलिया। पुलिस वाकई पर अंदर पहुंची, लाश अस्पताल मुंतकिल कया। आयतंगवाणी में हथियारबंदन की फायरिंग छो अस्पताल कयो। नौजवान सखर के निजी अस्पताल में इलाज दौरान जख्म असूल से दम दिनों। पुलिस चवण है तो वाक्य पुरानी दुश्मनी का पेश आयो है, जांच करूं पाया।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
6: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फील करें। अगर इतफा था रास्ता मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव है, लोग एक आदमी तो कहता ना कम से कम जो है इज्जत हुई।
1: एमपीएस और सरकीत उलबर संपूरत के मौके पर जान लगो आला स्तर जांच का आगे बाकी इतफाकी करार दे छो फर्जी तौर से जांच जो डॉक्टर सोराब के बयान में यकीन दियारण की कोशिश कई तो बाकी इतफाक है। बिलावल सरकी पिस्टल साहब अजमल उर्फ नौबान के गोलियों लगियों, पुलिस पर वडेरे की विंगारूपण की बाकी करार दई केस दाखिल कर छो। अमेरिका ए ईरान विच में गालियों जो बो दौर जल्द पाकिस्तान की मिल थी।

0: व्हाइट हाउस बारां फायरिंग में मुलिस जवाबदार एक वाटडू सिक्योरिटी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई में मारजी पिया। व्हाइट हाउस बारां चेक पोस्ट से फायरिंग कंदर जवाबदार सुणप मेरीलैंड वासी 21 साल नाइसर बेस तौर कई वही। जवाबदार जो जहनी तवाजुन ठीक न हो पैरिया भी सेक्रेट सर्विस जे अधिकारियों से विड़ी चुको। वाके बाद व्हाइट हाउस में लगायल लॉकडाउन खत्म। गुजरियल रात हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट से हमलो कर 30 का गोलियों फायर कय। गोलियों के ठकान सबब साफिन अमले में भाज पैजी वही खौफ हिरास पकड़ी वो। वाके वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हो केस महफूज हंध मुंतकिल किया वो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, K-Electric और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
4: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों के खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: What do you buy?
1: हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम.
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन.

रखने वाले हैं या नहीं। ओके तो पीछे लिए कल फोन उठाएंगे वो कल आरजे 881 पर। अगर आप मुझे फैस गाना FM 88 तो ऑफिशियल पेज जनाब लाइव पोस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। लाइव पोस्ट के ऊपर आप आ जाएंगे और पोस्ट को जल्दी जल्दी से पोस्ट

खराब हो जाए बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जनाब जब आप डॉक्टर पिंपल का ये एक्नी वाला ट्यूब इस्तेमाल, चेहरे पर जो एक्नी है ना उससे फाइट करता है, आपके चेहरे पर जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म करता है, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो स्मूथ और क्लियर बना देता है, आपके चेहरे पर एक्नी मार्क्स हो या फिर आपके चेहरे पर जो है ना किसी भी तरह का एक आपके चेहरे पर एक रीजन होते हैं वो खत्म कर देता है। तो ये डॉक्टर पिंपल ज्यादा बर्फ्री हो जाए तो बस यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप उसके बाद

लगाइएगा और लगाने से पहले हाथों को और फेस को अच्छे से वॉश कीजिए। जनाब सो ये हमारे पास बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करी भी जो

ज्यादा आसान हो चुकी है, जैसा जा रहा है लोगों के लिए वो काम वैसे ही आप लोगों के हो चुकी है, क्योंकि आपके मार्केट में आ चुके हैं। तो जाइए और परचेज कीजिए, चले जाएंगे। तो माटी का बधाई हो, साथ का बधाई की आयो और सास लड़की हमारे सलाम समर्सद माचो भी कम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ। और ये गाना भाई मैं सोच रही थी जब से हमने जो है ना ये प्रोग्राम करना स्टार्ट किया है, मैं आपको कहती हूँ कि व्हाइट एज की लवली क्रीम भी आप लोगों के लिए अवेलेबल, व्हाइट एज की लवली क्रीम के साथ साथ मुझे इस गाने की याद आ जाती है कि ये वाला गाना भी आप लोगों को सुनाना है। तो आज दादाला ने फरमाइश कर दी तो मैंने सोचा चलो भाई ये वाला गाना तो हम लाजमी सुनेंगे। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम भी आप लोगों के लिए मौजूद है, इसके क्या फायदे हैं और आप क्यों इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। फिलहाल आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, आप क्या कह रहे हैं, पोस्ट को इसी बात पर लाइक और शेयर करते रहिए।

अच्छा आदर कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, काश आप होते तो डेली स्कूल आते हम भी, कभी कोई बहाना नहीं करते स्कूल ना जाने के लिए। अच्छा अच्छा सिमार के क्या आप आपको वेलकम करते हैं।

अच्छा सच्ची बताऊं, मैं जब ब्रेक पर जाती हूँ ना, ब्रेक में होती हूँ, तो मैं खुद बोर हो रही होती हूँ. मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी ब्रेक में मेरा इतना सर्च हुए. मुझे तो 4-5 घंटे मिलनी चाहिए बकबक करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बोलना चाहती हूँ. मैं बहुत बोलने वाला इंसान हूँ, तो थोड़ा लगता है, समझ रहे. और इसके साथ साथ जो ये बहुत ही प्यारा गाना हमने एंजॉय किया, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए. और अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595. अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595.

अच्छा एसन वैसे तमा चाओ सही था पर तमा के भी जको ने जिम्मेवार डी मोकल हुंदो है ना मांजी मोकल तमा ने तवांजी भी मोकल सबनी जी मोकल सब मजे करेंगे अच्छा ये नोरेसन दुनिया भाई हमारे साथ मौजूद है क्या बात है एंजॉय करें एंजॉय करें वासु भाई हमारे साथ मौजूद है हेलो वासु भाई प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम बहावल नगर से हमारा शो ज्वाइन कर चुके हैं थैंक यू जी वेलकम करते हैं आपको

अच्छा कहते हैं खाना ज्यादा खाते हैं ईद में, ये भी लोग अलग लेवल के बंदे वाकई में। गर्मियों में जब लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, बहुत ज्यादा खाने खाते हैं, तो मैं खुद ही सोचती हूँ वैसे माई चवंदी माण्हू चवंदा ईद वारी ॾींहुं इलाही मानी खाईंदा आहिनि माण्हू, पर मां उहो वाहिद इंसान आहे जेको ईद वारी ॾींहुं शायदि मानी न खाईंदो आहे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वाला खाना देकर मेरा पेट भर जाता है, तो ये है। हाँ लेकिन ईद से पहले आप लोगों ने व्हाइट इश की लवली क्रीम लाजमी लेनी है, ताकि आप ईद पर जो है ना अगर तैयार होना आपको बहुत मुश्किल लगे तो बस आप व्हाइट इश की लवली क्रीम थोड़ी सी मिकदार में लगा ली चेहरे पर, यूं आप रेडी हो जाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह चिलके तो चिलके दी क्या लगायो थी। अरे स्मार्टो गोपाल कहते कि सिद्धरा मुझे नहीं भी ऐसे इसीलिए कहते ना कि दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले खुद देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻंदा कयो पोइ ईअं ई तव्हां हमेशा बेवकूफ़ थींदा रहंदा ज़िंदगी। उन खां अलावा जेको आहे सो जेको आहे तेको आहे तेको आहे जेको आहे हीउ वारो गानो त लाज़मी हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम में, अगरि हू ॿुधंदा त हीउ वारो त लाज़मी ॿुधंदासीं। सुभाणे सोचां पई त हाणे तव्हां खां इजाज़त बि वठूं, ठीकु आहे। चाचू चए थो तव्हां लंच कयो असांखे फॉर्चूनर घुर्जे रास की बात है वैसे असांखे भी

लोगों से मुलाकात हमारी होने वाली है जी कल नहीं बल्कि परसों वाले प्रोग्राम में, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो मुझसे नाचीज से तो माफ कर दीजिएगा, और आप जो है ना वो वाइट जरूर करके देखिएगा, वैसे वाइट ही नहीं बिना वो लिया करें।

का ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो बियो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। नवाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई। फील्ड मार्शल सिदासु मुनीर ऑपरेशन में फील्ड मार्शल सिदासु मुनीर जूं कोशिशूं बि वाकाइण जोगियूं आहिनि। मुस्लिम अॻवाननि सां ॻाल्हियूं कयूं। ॻाल्हियुनि दौरान हाकारी नतीजनि जी उमीद पैदा थी। पाकिस्तान खिते में पायदार अमुन गडि॒यल एतराम ऐं इस्तेहकाम लाइ हर मुमकिन कोशिशूं जारी रखंदो। खिते ऐं दुनिया जे अमुन लाइ चिकताण न पर ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी खे तरजीह डि॒यणी पवंदी।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दहशतगर्दनि हुननि जे सरप्रस्तनि जो असल चेहरो ॾिसे। वज़ीर आज़म चयो त धमाके सबब मासूम वयूं। दहशतगर्दनि जूं अहिड़ियूं बदराणियूं कार्रवायूं पाकिस्तानी आवाम जो आज़म कमज़ोर नथियूं करे सघनि। दहशतगर्दनि खे पाक आज़म ते क़ाइम आहियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त भारतीय सरप्रस्ती में सरगर्म नेटवर्क आहे। पाकिस्तान जे दुश्मन जो मुल्क खे गैर मुस्तहकम करण वारी साज़िशूं नाकाम थींदियूं। पूरी क़ौम दहशतगर्दी ऐं पाकिस्तान जे अमन ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िशनि ख़िलाफ़ आहे। केपी जे इलाइक़े बनू में पाक फ़ौज पुलिस सिटडी जो गडि॒यल ऑपरेशन सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन में 16 ख़ारजी मारिजी विया। ब पुलिस अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्स जो चवण आहे त ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे ठिकाणनि खे तबाह कयो वियो। पाक फ़ौज ऐं पुलिस समेत ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे।

0: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GAFM नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम।

0: इनामत जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
1: इन भाई साहब के शहरों में बैंक कर्जेस और आपका पैसा दुनिया के किसी भी
0: रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह।

0: ईरान की सकाफत से गुंदा हुआ। जोर से बंदा हुआ।
1: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6
1: इट्स फाइन। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जने मां पांजो ख्याल रखन दिया है त सेहत नाम कश फाउंडेशन एंड कैन।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेट

0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवण आहे त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प मुस्लिम अॻवाननि सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, कारी नतीजनि जी उमेद पैदा थी आहे। पाक पायदार अमुन गॾियल एतिराम खिते ऐं दुनिया जे अमुन लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफारतकारीअ खे तरजीह ॾियणी पवंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एवर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास

0: देखकर इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم ایٹرک سندھ کی آواز.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस.
4: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें.
5: 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है.
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं.
4: तो भाई साहब क्या समझे.
7: खुशखबरी, खुशखबरी, हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे. तव्हां कंहिं बि बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में हिते कयो वेंदो आहे. सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं हस्पताल नवाबशाह. मरीजन जो चेकअप ऐं इलाज होम्योपैथिक तरीक़े सां कंदा आहिनि. अलहमदुलिल्ला केतिरा ई मरीज चुका आहिनि. अव्हां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो. चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया. क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे. क्लिनिक जो टाइम आईडी छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे मोकल आहे. एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद. वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770.
8: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़. ॿुधंदा रहो.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भागे 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी, हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक

देखकर वेंदवा है। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन, अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: स्लोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये yeah!

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: अमित बेन सेक्रेटरी

कोटिया के शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वयो। शहीदन में एफसीए जा 3 जवान भी शामिल। वडे वजीर सरफराज बुख्टी के मावन शाहिद रिंद की तस्दीक। शाहिद रिंद चाहे तो दहशतगर्दन मासूम। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी चयो तो दहशतगर्दन ए उनन जा सरन के नुकसान पहुंचाइण चाहन था। उहे दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन लाइ कोशिशन के नुकसान रसाइण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन ए उनन जे सरपरस्तन जो असल चेहरो डिसे। वजीर आजम चयो तो धमाके सबब मासूम जानू विञाइजी वयो। दहशतगर्दन जो अड़ी बुज़दिलाणियूं कारवायूं पाकिस्तानी अवाम जो अज़म कमजोर नथियो करे सघन। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो में सरगर्म नेटवर्क दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तक करण वाली साजिशू नाकाम थींदियूं।

0: ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलींदो ऐं काफ़ीस न वठंदो, पंहिंजा विछायल माइंस हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकाबंदी ख़तम कंदो। अमरीकी डील आणे छॾिया न आज़ादी सघंदो। इहो सभु डील जंगबंदीअ में वाद दौरान थींदो, एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो।
1: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, तो जीए FM 91.6।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश जीतने का मौका देगा। स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस आपकी तरह बड़ा बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस, और आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अप्रैल फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक डील करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
6: GFM 91.6।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी को वाइट एश ब्यूटी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: या ही सिंध जी दिल प्यारे एफएम नाइन
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनिए।

इकोनॉमिक जोन ठाहियो वियो आहे। पाकिस्तान जल्द खिते में तरक़ीअ जी सफ़र में चीन जे बराबर हूंदो। असांखे कर्ज़ न महारत खपे। पाकिस्तान ऐं चीन जी कंपनियुनि विच में MOUs ते सयूं कयूं वयूं।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सघंदा वॾी ईद जूं वॾियूं मोकलूं सिंध हुकूमत ऐलान करे छॾियो सिंध में हीट व्यू अलर्ट जारी पारो 50 ताईं वञण जो इम्कान शहरनि खे गैर ज़रूरी तौर घरां न निकरण जो मशवरो औरतुनि खे बाख़्तियार बणाइबो मुफ़्त स्कूटी ट्रेनिंग ऐं ड्राइविंग लाइसेंस ॾींदासीं शर्जील इनाम मेमण सरकारी मनसूबनि ते मुक़रर 85 मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम ओग्रा में करप्शन स्कैंडल जी जांच तेज ऑयल मेंबर तलब ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध में पाणी जी खोट ऐं ज़रई बुहरान सिंध में सरकारी तौर ईद उल अज़हा जे 4 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे सिंध हुकूमत पारां उन हवाले सां नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे उन नोटिफिकेशन मूजिब ईद उल अज़हा जे मौके ते 24 मई खां 29 मई ताईं मोकलूं हूंदियूं वाज़े रहे त वफ़ाकी हुकूमत पारां ईद उल अज़हा जे मौके ते 3 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे जेकी 24 मई खां 29 मई ताईं हूंदियूं मौसमियात खाते सिंध में हीट व्यू जो खदशो ज़ाहिर करे छॾियो आहे मौसमियात खाते जो चवणु आहे त 25 मई खां 31 मई ताईं गर्मी पद मामूल खां 6 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं वधी सघे थो मौसमियात खाते मूजिब सिंध जे अंदरूनी ज़िलनि में गर्मी पद 50 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं पहुचण जो इम्कान आहे मौसमियात खाते शहरनि आबादगारनि ऐं बुज़ुर्गनि खे हिदायत कई आहे त हू गैर ज़रूरी तौर ॿाहिरि निकरण खां पासो कनि ऐं सख़्त गर्मीअ खां एहतियाती उपाव इख़्तियार कनि सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सॼे सूबे में मंशियात जे नासुर ख़िलाफ़ बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई जारी आहे ऐं ज़हर पखिड़ींदड़ अंसरनि ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत जो तुर्त एक्शन साराह जोॻो आहे हुन वाज़े कयो आहे त धरतीअ खे मंशियात खां पाक करणु असांजी पहिरीं तरजीह आहे हैदराबाद में हिकु तकरीब खे ख़िताब कंदे सूबाई वज़ीर अनमोल नाले औरत जो हवालो ॾींदे चयो त हुन समाज में ज़हर फैलाइण जी कोशिश कई जंहिं ते कानून हरकत में आयो हुन चयो त सूबाई हुकूमत जिते हिकु तरफ़ ॾोहनि ऐं मंशियात ख़िलाफ़ विढ़ी रही आहे उते ॿिए पासे औरतुनि खे बाइख़्तियार बनाइण लाइ तारीख़ी क़दम खणी रही आहे शर्जील इनाम मेमण ऐलान कयो त सिंध हुकूमत औरतुनि खे बिना मुआवज़े स्कूटी तरबियत ऐं ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करे रही आहे ऐं उहा विर्छ निज मेरिट जे बुनियाद ते कई पई वञे हुन चयो त हाणे वकील बिरादरीअ सां तालुक रखंदड़ औरतुनि खे बि पिंक स्कूटी मुफ़्त ॾिनी वेंदी जॾहिं त औरतुनि लाइ धार पिंक बसूं अॻु ई कामयाबीअ सां हलायूं पियूं वञनि सूबाई वज़ीर तवानाई ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ते ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क में सस्ती बिजली जी पैदावार रुॻो थर जे कोयले सां ई मुमकिन आहे ऐं सिंध सरकार उन जहिड़ा सभु वॾा ऐं अवामी फलाही मनसूबा कामयाबीअ सां शुरू कया आहिनि जंहिंजे दायरे खे हाणे वधीक सूबे ताईं फहिलायो पियो वञे सिंध हाई कोर्ट जे आईनी बेंच मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडा

0: बुनियादनि ते मुक़रर 85 खां वधीक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। हाईकोर्ट जे आईनी बेंच आॾो मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक बुनियादनि ते मुक़रर मुलाज़मनि जी मुस्तक़िली बाबति दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी। वकील मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त दरख़्वास्त गुज़ारनि खे सिंधु हुकूमत जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि में मुक़ाबले वारे अमल ज़रिए मुक़रर कयो वियो हो ऐं उन्हनि जी नौकरियुनि में साल ताईं वाधि कई वेंदी रही। अदालत रिमार्क्स ॾिना त सिंध रेग्यूलराइज़ेशन कानून तहत दरख़्वास्त गुज़ारनि खे मुस्तक़िल कयो वञणु घुर्जे, जेतोणीक कॉन्ट्रेक्ट मुलाज़मनि खे मुस्तक़िलीअ जो हक़ बुनियादी हक़ तौर हासिल नाहे, पर सिंधी असेंबली कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जे लाइ ख़ासि कानून साज़ी कई आहे। सिंध हाई कोर्ट चयो त उहे कानून सालनि ताईं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾींदड़ मुलाज़मनि खे तहफ़ फराहम कनि था। हुकूमत बिना कंहिं इम्तियाज़ी सलूक जे समूरनि अहल मुलाज़मनि खे कानून जो फ़ाइदो ॾियण जो पाबंद आहे। ओगरा में मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल जी जांच में वॾी अगभराई, मेंबर ऑयल तलब। शुरूआती शाहिदनि जे रोशनीअ में ओगरा जे मेंबर ऑयल जे किरदार बाबति अहम सवाल साम्हूं अची विया। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची, ओगरा में मुबैना मेगा करप्शन, पेट्रोल स्टॉक्स में हेराफेरी, कौमी खज़ाने खे नुक़सान पहुचाइण ऐं रेग्यूलेटरी अख़्तियारनि जी मुबैना ग़लति इस्तेमाल वारे मामले जी जांच तेज़ीअ सां जारी रखी वई। दस्तावेज़नि मूजिब FIA CC कराची इंक्वायरी नंबर 43/2026 तहत ओगरा जी मेंबर ऑयल ज़ैनुल आबदीन कुरेश खे बाक़ायदा कॉल अप नोटिस जारी कंदे 25 मई 2026 सूमर जे ॾींहुं सुबुह जो 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो आहे। इंक्वायरी में गो पेट्रोल समेत केतिरनि ई ऑयल मार्केटिंग कंपनियुनि ख़िलाफ़ पेट्रोलियम शयुनि जा ज़खीरा लिकाइण, ग़लति रिपोर्टिंग, प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स ऐं मुबैना फ्रॉड ऐं रेग्यूलेटरी अहलकारनि ऐं टर्मिनल ऑपरेटर सां मिली भगत जे इल्ज़ामनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। केस में वधीक अहम शख़्सियतुनि खे बि तलब करण जो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में पाणी जी खोट ऐं ज़रई बोहरान। सिंध जेको कंहिं दौर में बाबुल इस्लाम सां गॾु ज़रई खु़शहालीअ जी अलामत समझो वेंदो हो, अॼु पाणीअ जी शदीद खोट सबबि सख़्त बोहरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। दरियाए सिंध जे वाकुरनि में घटताई, गैर मुनसफ़ाणी पाणी विर्छ, मौसमी तब्दीलियूं ऐं नाक़स पॉलिसियूं सिंध जी ज़रात खे तबाहीअ जे किनारे ते आणे बीहारियो आहिनि। ॻोठाणनि इलाइक़नि में आबादगार सख़्त परेशान आहिनि। केतिरनि ई ज़िलनि में वाहन ऐं शाखुनि में पाणी न हुजण करे हज़ारे एकड़ ज़मीन बंजर बणिजी रही आहे। कणक, सारिन, कमंद ऐं सब्ज़ियुनि जा फ़सल सख़्त मुतासिर थिया आहिनि, जंहिं सबबि न सिर्फ़ आबादगारनि खे माली नुक़सान पहुतो आहे पर ख़ुराक जी खोट जो बि ख़तरो पिणु वधी रहियो आहे। आबादगारनि जूं दाहूं। आबादगारनि जो चवणु आहे त असां सॼो साल कर्ज़ खणी ॿिज, भाण ऐं ज़रई दवाऊं वठूं था, पर पाणी न हुजण करे फ़सल सुकी वञनि था। केतिरनि ई नंढनि आबादगारनि माल मवेशी विकिणी गुज़र सफ़र करण ते मजबूर थी विया आहिनि, जॾहिं त नौजवान रोज़गार जी तलाश में ॻोठ छॾे शहरनि ॾांहुं मुंतक़िल थी रहिया आहिनि। माहिरनि जी राय। ज़रई माहिरनि मुताबिक़ मौसमी तब्दीलियूं, पाणीअ जे नाक़स इंतज़ाम, गैर क़ानूनी पाणी चोरी ऐं पुराणो आपाशी निज़ाम सिंध जे ज़रई बुहरान जा अहम सबब आहिनि। माहिरनि ख़बरदार कयो आहे त जेकॾहिं पाणीअ जी मुनसफ़ाणी विर्छ ऐं जदीद आपाशी निज़ाम ते ध्यान न ॾिनो वियो त ईंदड़ सालनि में सिंध में ख़ुराक जो वॾो बुहरान पैदा थी सघे थो। अवामी ख़दशा। सिंध जे माण्हुनि जो मुतालबो आहे त पाणीअ जी मुनसफ़ाणी विर्छ यकीनी बणाई वञे, वाहन जी सफ़ाई कई वञे, टेल ताईं पाणी पहुचायो वञे ऐं आबादगारनि जे लाइ ख़ासि इमदादी पैकेज जो ऐलान कयो वञे। ज़रई ज़रूरत नाहे पर जो मुस्तक़बिल पिणु ख़तरे में ईंदो, न त ॿी सूरत में ईंदड़ वक़्तु वधीक ॾुखियो थी सघे थो। इहो हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे रखी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माया गुलाब खान बेणा।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा वॾी ईद जूं वॾियूं मोकलूं सिंध हुकूमत ऐलान करे छॾियो सिंध में हीट व्यू अलर्ट जारी पारो 50 ताईं वञण जो इम्कान शहरनि खे गैर ज़रूरी तौर घरां न निकरण जो मशवरो औरतुनि खे बाख़्तियार बणाइबो मुफ़्त स्कूटी ट्रेनिंग ऐं ड्राइविंग लाइसेंस ॾींदासीं शर्जील इनाम मेमणो सरकारी मनसूबनि ते मुक़रर 85 मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम ओग्रा में करप्शन स्कैंडल जी जांच तेज वाइल मेंबर तलब ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध में पाणी जी खोट ऐं ज़रई बुहरान सिंध में सरकारी तौर ईद उल अज़हा जे 4 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे सिंध हुकूमत पारां उन हवाले सां नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे उन नोटिफिकेशन मूजिब ईद उल अज़हा जे मौके ते 24 मई खां 29 मई ताईं मोकलूं हूंदियूं वाज़े रहे त वफ़ाकी हुकूमत पारां ईद उल अज़हा जे मौके ते 3 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे जेकी 24 मई खां 29 मई ताईं हूंदियूं मौसमियात खाते सिंध में हीट व्यू जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो आहे मौसमियात खाते जो चवणु आहे त 25 मई खां 31 मई ताईं गर्मी पद मामूल खां 6 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं वधी सघे थो मौसमियात खाते मूजिब सिंध जे अंदरूनी ज़िलनि में गर्मी पद 50 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं पहुचण जो इम्कान आहे मौसमियात खाते शहरनि आबादगारनि ऐं बुज़ुर्गनि खे हिदायत कई आहे त हू गैर ज़रूरी तौर ॿाहिरि निकरण खां पासो कनि ऐं सख़्त गर्मीअ खां एहतियाती उपाव इख़्तियार कनि सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सॼे सूबे में मंशियात जे नासुर ख़िलाफ़ बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई जारी आहे ऐं ज़हर पखिड़ींदड़ अंसरनि ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत जो तुर्त एक्शन साराह जोॻो आहे हुन वाज़े कयो आहे त धरतीअ खे मंशियात खां पाक करणु असांजी पहिरीं तरजीह आहे हैदराबाद में हिकु तकरीब खे ख़िताब कंदे सूबाई वज़ीर अनमोल नाले औरत जो हवालो ॾींदे चयो त हुन समाज में ज़हर फैलाइण जी कोशिश कई जंहिं ते कानून हरकत में आयो हुन चयो त सूबाई हुकूमत जिते हिकु तरफ़ ॾोहन ऐं मंशियात ख़िलाफ़ विढ़ी रही आहे उते ॿिए पासे औरतुनि खे बाइख़्तियार बनाइण लाइ तारीख़ी क़दम खणी रही आहे शर्जील इनाम मेमण ऐलान कयो त सिंध हुकूमत औरतुनि खे बिना मुआवज़े स्कूटी तरबियत ऐं ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करे रही आहे ऐं उहा विर्छ निज मेरिट जे बुनियाद ते कई पई वञे हुन चयो त हाणे वकील बिरादरीअ सां तालुक रखंदड़ औरतुनि खे बि पिंक स्कूटी मुफ़्त ॾिनी वेंदी जॾहिं त औरतुनि लाइ धार पिंक बसूं अॻु ई कामयाबीअ सां हलायूं पियूं वञनि सूबाई वज़ीर तवानाई ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ते ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क में सस्ती बिजली जी पैदावार रुगो थर जे कोयले सां ई मुमकिन आहे ऐं सिंध सरकार उन जहिड़ा सभु वॾा ऐं अवामी फलाही मनसूबा कामयाबीअ सां शुरू कया आहिनि जंहिं जे दायरे खे हाणे वधीक सूबे ताईं फहिलायो पियो वञे सिंध हाई कोर्ट जे आईनी बेंच मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक बुनियादनि ते मुक़रर 85 खां वधीक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे हाई कोर्ट जे आईनी बेंच आॾो मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक बुनियादनि ते मुक़रर मुलाज़मनि जी मुस्तक़िली बाबति दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी वकील मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त दरख़्वास्त गुज़ारनि खे सिंध हुकूमत जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि में मुक़ाबले वारे अमल ज़रिए मुक़रर कयो वियो हो ऐं उन्हनि जी नौकरियुनि में साल ताईं वाधि कई वेंदी रही अदालत रिमार्क्स ॾिना त सिंध रेग्यूलराइज़ेशन कानून तहत दरख़्वास्त गुज़ारनि खे मुस्तक़िल कयो वञणु घुर्जे जेतोणीकि कॉन्ट्रेक्ट मुलाज़मनि खे मुस्तक़िली जो हक़ बुनियादी हक़ तौर हासिल नाहे पर सिंध असेंबली कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जे लाइ ख़ासि कानून साज़ी कई आहे सिंध हाई कोर्ट चयो त उहे कानून सालनि ताईं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾींदड़ मुलाज़मनि खे तहफ़ुज़ फराहम कनि था हुकूमत बिना कंहिं इम्तियाज़ी सलूक जे समूरनि अहल मुलाज़मनि खे कानून जो फ़ाइदो ॾियण जो पाबंद आहे ओग्रा में मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल जी जांच में वॾी अगभराई मेंबर ऑयल तलब शुरूआती शाहिदनि जे रोशनीअ में ओग्रा जे मेंबर ऑयल जे किरदार बाबति अहम सवाल साम्हूं अची विया FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची ओग्रा में मुबैना मेगा करप्शन पेट्रोल स्टॉक्स में हेराफेरी क़ौमी ख़ज़ाने खे नुक़सान पहुचाइण ऐं रेग्यूलेटरी अख़्तियारनि जी मुबैना ग़लति इस्तेमाल वारे मामले जी जांच तेज़ीअ सां जारी रखी वई दस्तावेज़नि मूजिबि FIA CC कराची इंक्वायरी नंबर
43,026 तहत ओगरा जी मेंबर ऑयल ज़ैनुल आबदीन कुरेशी के बाकायदा कॉल अप नोटिस जारी कंदे 25 मई 2026 सूमर के ढी सुबह जो 9 बजे जाती हैसियत में तलब करे वरतो है। इंक्वायरी में गो पेट्रोल समेत केतरनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों खिलाफ पेट्रोलियम शेयर जा जखीरा लिकायण गलत रिपोर्टिंग प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स मुबैना फ्रॉड रेगुलेटरी एहलकार।

0: मेडिकल रिपोर्ट। सिंध में पानी की खोट और ज़रई बोहरान। सिंध जो कें दौर में बाबुल इस्लाम से गड ज़रई खुशहाली की अलामत समझो वो हो, अज पानी की शदीद खोट सबब सख्त बोहरान के मुंह दे रो है। दरियाए सिंध के वाकुरन में घटताई, गैर मुनसफानी पानी विरछ, मौसमी तब्दीलियों और नाकस पॉलिसियों सिंध की ज़रात के तबाही के किनारे ते आणे बिहार। गोठाणन इलाकन में आबादगार सख्त परेशान आहिन। केतरन ही दिलन में वाहन और शाखुन में पानी न होजन करे हजारे एकड़ जमीन बंजर बणजी रही है। कणक, सारिन, कमंद और सब्जिन जहा फसल सख्त मुतासर थिया, जै सबब न सिर्फ आबादगारन के माली नुकसान पहुंतो है पर खुराक की खोट जो भी खतरो पिण वधी रहो है। आबादगारन जो दाहूं। आबादगारन जो चवण है असा सजो साल कर्ज खणी बिज भाण और ज़रई दवाऊं वठूं था पर पानी न होजन करे फसल सुकी वन था। केतरन ही नंढन आबादगारन माल व मवेशी विकणी गुजर सफर करण ते मजबूर थी व्या, जडे तो नौजवान रोजगार की तलाश में गोठ छदे शहर ना मुंतकिल थी रहा आहिन। माहिरन जी राय। ज़रई माहिरन मुताबिक मौसमी तब्दीलियों, पानी के नाकस इंतजाम, गैर कानूनी पानी चोरी, पुराणो आपाशी निज़ाम सिंध के ज़रई बुहरान जहा अहम सबब आन। माहिरन खबरदार किया है तो जैसे पानी के मुनसफानी विरछ जदीद आपाशी निज़ाम से ध्यान न दिनों वो तो ईंदड़ साल में सिंध में खुराक जो वो बुहरान पैदा थी सके तो। अवामी खदशा। सिंध के मानन जो मुतालबो है तो पानी की मुनसफानी विरछ यकीनी बनाई वे, वाहन की सफाई कई वे, टेल ताई पानी पहुंचाया वे, आबादगारन के लिए खास इमदादी पैकेज जो ऐलान किया वे। पानी सिर्फ ज़रई ज़रूरत ना है पर सिंध की मईशत, सकाफत और जिंदगी जो बुनियाद है। जैसे पानी जो मसलो हल न थो तो सिंध की ज़रात से गड लखे मानन जो मुस्तकबिल पिण खतरे में पैजी सके तो। हुकूमत माहिरन अवाम के गजी इन बहरान जो मुस्तकिल हल गोल्हणो पवंदो, न तो भी सूरत में ईंदड़ वक्त वधीक दुख्यो थी सके तो। यो इन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: तहजीब व सकाफत आन नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए FM 91.6।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: की ड्रामे शामिल हो जाए।
1: रिश्ता भरोसे का
2: जिंदगी गुजार सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह मिंटन ते सिर्फ GF नेटवर्क ते।

जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

मई खां 29 मई ताईं हूंदियूं। मौसमियात खाते सिंध में हीटवेव जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त 25 मई खां 31 मई ताईं गर्मी पद मामूल खां 6 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं वधी सघे थो। मौसमियात खाते मूजिब सिंध जे अंदरूनी ज़िलनि में गर्मी पद 50 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं पहुचण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते शहरनि, आबादगारनि ऐं बुज़ुर्गनि खे हिदायत कई आहे त हू गैर ज़रूरी तौर ॿाहिरि निकरण खां पासो कनि ऐं सख़्त गर्मीअ खां एहतियाती उपाव इख़्तियार कनि। जे हुकूमत जो तुर्त एक्शन साराह जोगो आहे। हुन वादे कयो आहे त धरतीअ खे मंशियात खां पाक करणु असांजी पहिरीं तरजीह आहे। हैदराबाद में हिक तकरीब खे ख़िताब कंदे सूबाई वज़ीर अनमोल नाले औरत जो हवालो ॾींदे चयो त हुन समाज में ज़हर फैलाइण जी कोशिश कई जंहिं ते कानून हरकत में आयो। हुन चयो त सूबाई हुकूमत जिते हिक तरफ़ ॾोहनि ऐं मंशियात ख़िलाफ़ विढ़ी रही आहे, उते ॿिए पासे औरतुनि खे बाइख़्तियार बनाइण लाइ तारीख़ी क़दम खणी रही आहे। शर्जील इनाम में मुण ऐलान कयो त सिंध हुकूमत औरतुनि खे बिना मुआवज़े स्कूटी, तरबियत ऐं ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करे रही आहे ऐं उहा विर्छ निज मेरिट जे बुनियाद ते कई पई वञे। हुन चयो त हाणे वकील बिरादरीअ सां तालुक रखंदड़ औरतुनि खे बि पिंक स्कूटी मुफ़्त ॾिनी वेंदी, जॾहिं त औरतुनि लाइ धार पिंक बसूं अॻु ई कामयाबीअ सां हलायूं पियूं वञनि। तवानाई ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ते ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क में सस्ती बिजली जी पैदावार रुगो थर जे कोयले सां ई मुमकिन आहे ऐं सिंध सरकार उन जहिड़ा सभु वॾा ऐं अवामी फलाही मनसूबा कामयाबीअ सां शुरू कया आहिनि, जंहिं जे दायरे खे हाणे वधीक सूबे ताईं फहिलायो पियो वञे। सिंध हाई कोर्ट जे आईनी बेंच मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक बुनियादनि ते मुक़रर 85 खां वधीक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। हाई कोर्ट जे आईनी बेंच आॾो मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक बुनियादनि ते मुक़रर मुलाज़मनि जी मुस्तक़िली बाबति दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी। वकील मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त दरख़्वास्त सिंध हुकूमत जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि में मुक़ाबले वारे अमल ज़रिए मुक़रर कयो वियो हो ऐं उन्हनि जी नौकरियुनि में साल ताईं वाध कई वेंदी रही। अदालत रिमार्क्स दरख़्वास्त गुज़ारनि खे मुस्तक़िल कयो वञण घुर्जे, जेतोणीक कॉन्ट्रेक्ट मुलाज़मनि खे मुस्तक़िलीअ जो हक़ बुनियादी हक़ तौर हासिल नाहे, पर सिंध असेंबली कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जे लाइ ख़ासि कानून साज़ी कई आहे। सिंध हाई कोर्ट चयो त उहे कानून सालनि ताईं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾींदड़ मुलाज़मनि खे तहफ़ुज़ फराहम कनि था।

0: गैरकानूनी पाणी चोरी ऐं पुराणो आपाशी निज़ाम सिंध जे ज़रई बुहरान जा अहम सबब आहिनि। माहिरनि ख़बरदार कयो आहे त जेकॾहिं पाणीअ जे मुनसिफ पाणी विर्छ ऐं जदीद आपाशी निज़ाम ते ध्यान न ॾिनो वियो त ईंदड़ सालनि में सिंध में ख़ुराक जो वॾो बुहरान पैदा थी सघे थो। अवामी ख़दशा। सिंध जे माण्हुनि जो मुतालबो आहे त पाणी जी मुनसिफ पाणी विर्छ यकीनी बणाई वञे, वाहन जी सफ़ाई कई वञे, टेल ताईं पाणी पहुचायो वञे ऐं आबादगारनि जे लाइ ख़ासि इमदादी पैकेज जो ऐलान कयो वञे। पाणी सिर्फ़ ज़रई ज़रूरत न आहे पर सिंध जी मईशत, सकाफ़त ऐं ज़िंदगीअ जो बुनियादु आहे। जेकॾहिं पाणी जो मसलो हल न थियो त सिंध जी ज़राअत सां गॾु लखे माण्हुनि जो मुस्तक़बिल पिणु ख़तरे में पइजी सघे थो। हुकूमत, माहिरनि ऐं अवाम खे गॾिजी हिन बहरान जो मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो, न त ॿी सूरत में ईंदड़ वक़्तु वधीक ॾुखियो थी सघे थो। हीउ हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। 91.6
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़।
5: GFM 91.6।